0: समय पर उनके पालों का ध्यान दे इसी बने अरे नए पर एक पहली कठिनी तो उस समय पर खास क्या करें नए पर एक नए अपने खास क्या करें
1: अभी अमन के बाला मन किस पूरे लाइन है ये बड़ा ऊपर खाने के लिए पहली है तो उन्हें बोल दिया मन पर है उन पार्टी के लिए कठोर कठोर लोग तो तभी जरूरत है कि जब उन बोले तो पार्टी मन में

ठोस काम की अगर नहीं है तो मैं बताया और सब बताइएगा कोर्ट का तो वही है दो चार दिन और सब बताइएगा अच्छी तरह से

0: ऐसे कमाए उन्हें ले सकते जो खाने नहीं तो जिसके खाना नहीं पूजे लगे तो जब खाना नहीं पूजे लगे तो अपने कैसे तो उनके मरी तो क्या खाएगी
1: जिसके शिवरात्रि आते हैं पहले तो

0: अनुभव हमारे गांव कार्यक्रम में अपना स्वागत का मैं पूछता हमारा गांव कार्यक्रम रेडियो बुधवार मेरा एसोसिएट उत्पादित कार्यक्रम हो ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार बिहार को 8:30 बजे से प्रसारण होता हमारा गांव कार्यक्रम रेडियो बुधवार एफएम लगाए बाकी बढ़े 3 एफएम से प्रसारण होता बढ़े एक साथ ही एफएम राजापुर हो हमारे गांव कार्यक्रम स्थानीय लोकतंत्र में बलगर बनेगा जवाबदेही पारदर्शी और स्थानीय विकास में आम नागरिक सहभागिता बढ़ेगा संगसंग अपनत्व बनेगा उद्देश्य ये कार्यक्रम संचालन करेगी हो भर्खर अंतर्राष्ट्रीय 36वां अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनेगी ये दिवस मने तिहार प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मने तिहार ज्येष्ठ नागरिक को कहा अवस्था कसिन बाटिन्छ कना खोजी हो कि नही अथवा ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइ शुरू गर्न 36 वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक को कहा हालकै अवस्था अथवा ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनेर सार परिवर्तन नाही अथवा यहाँ उपलब्धि परिवार कि नही कना विषय में हमारा ज्येष्ठ नागरिक बस्कै नगरपालिका वार्ड नंबर 4 का ज्येष्ठ नागरिक कृष्ण राज विषय बातचीत प्रतिवादी यहाँ कार्यक्रम में स्वागत अपना ज्येष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष बस्कै नगरपालिका की भूमिका अपना फिर नेता पर थी कार्यक्रम में सहभागिता का लगी ज्येष्ठ नागरिक की अवस्था कसी हुआ
1: ज्येष्ठ नागरिक की अवस्था तो खरी मैं बोल रही इसलिए सब यहाँ ज्येष्ठ नागरिक संसार अभी कई बार तो खराब है 3 वर्ष लगातार 3 वर्ष में अभी खास फिर मतलब नहीं बनू जैसे पहले अवस्था न अवस्था शायद मैंने तो मैं तो काम करने राज्य पैसा करने से जैसे किताब में पढ़ते नहीं फुलका जो कर देगा किताब में तो बात तो व्यवहार में से सशक्त रूप में स्थानीय सरकार समझिए सशक्त रूप में समस्या का सशक्त रूप में
0: समुदाय
1: के अब समुदाय दिएर अब स्थानीय सरकारहरूमा दिएका सरकारका स्थानीय सरकारबाट चाहिँ चर्चा

0: सरकारी उचित माधव मार्ग का प्रथम व केसों से उत्तम संबंध हुआ
1: हजूर तो आप लोग प्रत्येक किसी के अधिकार उसका मार देना चाहते और वर्ग्या का पास वही मार्ग पशुपति प्लाज्मा दिव्या टीका एंड धान का कार्यक्रम साइजो इंजीनियर कम्बाइन मिल राइस मिल चारा मशीन हार्वेस्टर खेती किसानी करना
0: सुंदर 26

0: सक्नेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौं।
1: चिनो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौं।
1: स्वस्थ रहौं, सुखमय जीवन
2: निर्माण।

0: सरकार के लागि कानु राम छ भने अठानब्बे तलबीरो तिरपन्न उनासी पचहत्तर र अठानब्बे चालिस सत्तरी पच्चिस
1: सहायता

आदरणीय कविला हाम्रो प्राचीन सृजनशील आदिवासी समाज बाँसगढ़ी बर्दियासी समुदायकलाई चलागेल सामुदायिक रेडियो गुरुबाबा एफएम 99 बुन्दा 7 मेगाहर्ज मसे बोल्टी बाटी अठबेला हमार स्टूडियो घरीमा राति 10 बजेकलवा हमार आजुक सम्पूर्ण सेवा ओराइल जानकारी गराइटी समावेशी रेडियो सजिला आवाज रेडियो गुरुबाबा एफएम सुनकर साथ दिलकमा अपना धन्यवाद काल बिहान 5:45 फेर भेट हुने बाटी आज प्रसारणमा प्राविधिक संग्रहसँग हाम्रो सकुजना विदा माग्दै जय गुरुबाबा।